जो सतगुरु सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाए,

तेरांत न पार वरिया राग सा मोहला चौथा सपुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमागम पारा सब त्यावै है सब त्यावै है तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दाता हर त्याव

जी हम तुद बिन अवर न जाना, तुम पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाना। जो सेवै है जो सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावै है हर त्यावै।

तुदयापी श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुदयापी सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जान होई, आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैडा साई, जो तो भावें सोई थीसी, जो तू देहे सोई हम पाई रहा, सब तेरी तू सबनी त्याया।

गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम।

सेवक सिख हमारी तारिय है, चुन चुन सत्र हमारी मारिय है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारी पच्छा, श्री अस्तु जो करिय रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद

काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताही हमारा। जवन काल

नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन के सुखी एक बा एक एक की पीठ पछाने कट कट की पट पट की जाने जब करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देहे अपारा।

कृपा करी हम पर जग माता, पूर्ण करा ग्रंथ सुवराता, किलबिक सगल देखो हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता, श्री अस्तु जप पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़ेला, सुने गुंग जो याहे सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन।

संत का दुखी किसै का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी,

भगवन। सगल समगरी तुम रे सूत्र तारी, तुम ते हो ऐसो तुमरी गात मित तुम ही जानी। सदा कुर्बानी बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिरंगद गुरु ते अमरदास रामदासें हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ नि आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा त्यंतर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। नेक चलाई तेग वाही देख अंडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सुचियारियां दी कमाई दा ध्यांतर के बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारे आ। सिखी किसां स्वासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यांतर के बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियाए। तेख तेख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब।

जब लो नहीं पाग लीलार उदय तब लो प्रमते फिरते बहतायो काल कोर समुद्र में बुडत थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो तत विचार यह है मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जो न गर्भ ना आयो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु

तत अंगद भयो तत स्यों तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर किया अमरदास अमृत छत्र गुर रामह दिया गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो हो नायना

श्री गुरु तह बैठायो रहस कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जंप है असुर गए ते बा।

ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुरु एक ध्यान तौल धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या जिन सूत धरती होर पर होर तिस्ते भार तले कवन जोर एह लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया किता होए किता पसाओ एको क्वाओ तिस्ते होए लख दरियाओ जोत भावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे हे उदास असंख सूरम पक्षार असंख मोल लिवलाय तार जोत भावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड़ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कह विचार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सर संजोग वखाण जेता कीता तेता नाओ विणा वै नाही को थाओ जो तुत भावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार मोत पलीती कपड़ होए देसा बूण लइए ओह धोए उन्नी पापी आखण नाही कर कर करना लिख लै जाहो तीर्थ तप दया दत्त दान जेको पावे तिलका मान सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत न होए कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार वेल न पाईया पंडती जे होवे लेख पुराण छितवार न जोगी जाने रुत माहु न कोई किवका राखा किव साला ही क्यों वरनी किव जाना वड्डा साहिब वड्डी नाई की

0: कृपा भूते
1: कलंकन विनाने कलंकी स्वरूपे
0: नमो राजर्जेश्वरं परम रूपे
1: नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे
0: नमो राजर्जेश्वरं परम वृद्धे
1: नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे
0: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
1: अपेक्षीय परमी अपोगी अपुक्ते
0: नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते
1: नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे
0: नमो प्रेत प्रे देवे सूतर मे
1: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे
0: नमो छाछ नमो पूपे
1: नमो दान दाने नमो मान माने
0: नमो रोग रोगे नमस्तंसनाने
1: नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं
0: नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं
1: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
0: अनुपे अरूपे समस्त निवासी
1: सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिद कर्ता
0: अदो उर्ध अर्धं अंगं हर्ता
1: परं परं परमेश्वरं पोच पालं
0: सदा सर्वदा दाता दयालं
1: अचेदी अपेदी अनामं अकामं
0: समस्तो पराधि समस्त सतामं
1: तेरा जो चाचरी चंद जले हैं तले हैं अभीत हैं अबे हैं
0: प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं
1: भुजंग प्रयाचंद अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे
0: नमो सर्व माने समस्ति निधाने
1: नमस्त्वंग निनाते नमस्त्वंग परमाते
0: नमस्त्वंग अदंजे नमस्त्वंग अपंजे
1: नमस्त्वंग काले नमस्त्वंग अपाले
0: नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे
1: नमो राज राजे नमो साज साजे
0: नमो शाहे नमो महामाहे
1: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते
0: नमो रोख रोखे नमो शोक शोके
1: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे
0: नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं
1: नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं
0: नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं
1: नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं
0: नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे
1: नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे
0: अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे
1: पालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासि
0: सदा सर्वदारद सिद्धं निवासी
1: चटपट चंतव प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे
0: अखल योगे अचल भोगे
1: अचल राजे अटल साजे
0: अखल तर्म अलख कर्म
1: सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता
0: सर्वं पाने सर्वं माने
1: सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
0: सर्वं भूता सर्वं जूता
1: सर्वं देवं सर्वं पेवं
0: सर्वं काले सर्वं पाले
1: रुआल चंत प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जोन पुरख पार
0: सर्वमान देव पे वादुदार
1: सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकार
0: जतर ततर विराजे अब तूत रूप प्रसाल
1: नाम धाम न जा जाकर रूप रंग न रेख
0: आद पुरख दार मूर्त जोन आद सेख
1: देशो न पेश जाकर रूप रेख न राग
0: जतर ततर दिशा विशा फैलियो अनुराग
1: नाम काम बहीन पेख तामु न जा
0: सर्वमार्थ वर्तमान से मानता है
1: एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक
0: खेल खेल खेल खेल अनंत को ब्रेक
1: देव पेव न जाने जे वेद और कतेब
0: रूप नाम ना जात पाछो जानिए के जेब
1: आत्मात ना जात जाकर जन्म मरण बहीन
0: चक्कर बकर फिरे चतर चक मानिए पुरतीन
1: लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जे जाप
0: आ देवन आद मूरत थाप्यो सबे जे थाप
1: परम रूप नीत मूरत पूरन पुरख पार
0: सर विश्व रचो संजन कर्ण पंजन हार
1: काल हीन कलास जुगत काल पुरख देश
0: धर्मता सुपर मृत पूतला खपे
1: अग्रागना रंग जाके जात पात ना नाम
0: गर्व कंजन दुष्ट पंजन मुख दाय काम
1: आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरक अवधूत
0: गर्व कंजन सर पंजन आद रूप असूत
1: अंगीन अपंग नातम एक पुरक पार
0: सर्व लाई सर्व काई सर्व को प्रतिपार
1: सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेक
0: सर्व शास्त्र ना जानिए जे रूप रंगो रेख
1: परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नित
0: और शिवर प्राण शास्त्र ना आवि बहुचित
1: पाचंत प्रसाद गुणगन उदार मैं माँ पा
0: आसन अपंग उपमान अंग
1: अनपो प्रकाश निजना
0: आजान बाहु शाहन शाहु
1: राजान राजपान आन पा
0: देवान देव उपमा महान
1: इंद्रान इंद्र बालान बा
0: रंकार रंकाल आन काल
1: अद्भुत अंगा बा पंग
0: गत में तपार गुणगन उदार
1: गुणगन पर नाम निर्भय निकाल
0: अद्भुत प्रचंड मित गत खंड
1: अदिश्य क्रम अदिश्य तरम
0: सर्वा बनाड्या अंडन बांड्या
1: चाचरी

0: भुजंग प्रयाचंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता
1: चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने
0: चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पति
1: चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
0: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे
1: चतर चक्र मानिए चतर चक्र दानिए
0: चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र
1: न कर्मंग न काये अजन्म न जाये
0: न चित्र न मित्र परे है पवित्र
1: अतिशय अतिशय अदृश्य अकृश्य
2: भगवती संत प्रसाद कथते के आ चीज देसे के आ बीज पेसे
1: के आ कंज करबे के आ पंज परबे
2: के आ बीज लोके के आ दित सोके
1: के आ तुत परने के प्रबुद्ध करने
2: के राजंग प्रभाए के धर्मंग तुजा
1: के आ शोत परने के सर्वा परने
2: के जग संकृति है के शत्रंग क्षत्रिय
1: के ब्रह्म स्वरूप के अनुप अनुप के
2: आद देव के आप पे
1: के चित्र बहिने के अधीन
2: के रोजी रजा के रही मेरे हके
1: के पाप गैब है के गबुल गैब है
2: के फुल गुना है के साहन
1: के कारण कुनेंद है के रोजी दहेंद है
2: के राज करी मैं के कर्मं करी मैं
1: के सर्वंग तली है के सर्वंग दली है
2: के सर्वत्र माने है के सर्वत्र दाने है
1: के सर्वत्र दौड़े के सर्वत्र पौने
2: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
1: के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे
2: के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है
1: के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
2: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
1: के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले
2: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंत
1: के सर्वत्र पेखी सर्वत्र पेखी
2: के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज
1: के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है
2: के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण
1: है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
2: के सर्वत्र मान्य है सदैव अंग प्रदान
1: है के सर्वत्र जाति है के सर्वत्र थापिए
2: के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य
1: है के सर्वत्र

0: कमाल है कि जुर्रा जमाल है
1: कि अजलंग प्रकाश है कि मतो सुबास
0: है कि अजब स्वरूप है कि मतो पबूत है
1: कि मतो पिसा है कि आत्म प्रभा
0: कि अचलंग आनंद है कि मतो अपंग है
1: बार शांत है प्रसाद मन मन पर नाम गुण गन मुदाम
0: हर भर गंज हर नर पर पंज
1: अनगन पर नाम मन मन सलाम
0: हर नर अखंड भर नर अमंड
1: अनुभव नास मन मन प्रकाश
0: गुण गन पर नाम जल थल मुदाम
1: अनिच अंग आसन पंग
0: उपमा पार गत में तुदार
1: जल थल अमंड दिस्व से पंड
0: जल थल महंत दिस्व
1: बेअंत अनुभव नास तिर तिर तुराज
0: अजान बाहु एक के सुदाहु
1: ओंकार आद कतनी अनाद
0: थल खंड ख्याल गुर भर अकाल
1: कर पर नाम चित चरण नाद
0: अनचिज गाता जिज न बात
1: अनचिज गात अनरज बात
0: अनटुल पनार अंडठ पार
1: अद टीट तरमत टीट कर
0: अनभन अंत दाता महंत
1: हर बोल मना शांत तुए प्रसाद करनाले हर काले हर
0: खंडन

0: पति के
1: श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति के
0: माते मतंगन जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे
1: कोटुरंग कुरंग से कुदत पौन के गौन को जात निवारे
0: पारी पुजान के पूप पली बित न्यावत सीस ना जात बिचारे
1: इत्ते पय तो कहां पय पूपत अंत को नंग ही पाए पधारे
0: जीत फिरे सब देश दिशान को बाजट तोड़ मृदंग नगारे
1: गुंजत गुण के जान के सुंदर हिंसत ही है राज
0: पविक पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
1: श्रीपत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे
0: दमदान सुसंजम नेम अनेक बिसेक है
1: वेद पुराण कतेब पुराण जमीन जमान सबान के पिख है
0: आहार जति जरथार सब सो विचार हजार के देखे
1: श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिखा
0: सुध सिपा दुरंद दुबासो साज सना दुर्जान दलेंगे
1: पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख लेना हलेंगे
0: तोर अरी नमरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे
1: श्री पश्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निधान चलेंगे
0: वीर पार बड़े बड़ियार पछारी सार की थार पछैया
1: तोर देश मलिंद मवासन माते का जान के मान मलैया
0: गारे गरान को तोरन हार सो बातन ही चक चार लवैया
1: साहिब श्री सबको सरनायक जाचक नेक सो एक दिवैया
0: फनिंद निसाचर पूत पविक पवान जपेंगे
1: जीव जिते जल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे
0: पुन प्रतापन बाट जैत पुन तुन पापन के बो पुंज खपेंगे
1: सात समूह पर सन फिरे जग सत्र सबे अब लोग छपेंगे
0: मानव इंद्र गजेंद्र नरात पर जोन त्रिलोक को राज करेंगे
1: कोट स्नान के जादिक दान अनेक स्वयंबर साज भरेंगे
0: ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे
1: जे नर श्रीपत के प्रश्न

0: समुद्र न लोग गयो पर लोग गवायो।
1: बास की बखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बिठायो।
0: साच को सुन लेओ सब जिन प्रेम की ओ दिन ही प्रभु पायो।
1: काहू लै पाहन पूंज धरियो सिर काहू लै लिंग गड़े लटकायो।
0: काहू लख्यो।

0: जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: एक ओंकार शिवाय गुरु जी की फतेह। पात साई दशमी कबे बाज बेंती चौपाई।

0: को सिमट पर संकिर गैठा
1: सगरी सिष्ट दिखाए चंपव आजुगा स्वरूप संपव
0: अबर अच्छा मेरी तुम करो सिखो बार न सिख सिंगरो
1: दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणदाता
0: जेस तुझ तब सर नी परे तिनके दुष्ट दुखित वह मरे।

0: कटे ज्ञान अंजन सारिया
1: जिनका मोह टूटा तिनका सब सचे सवारिया
0: कहे नानक हो आनंद है आनंद गुर ते जानिया
1: बाबा जिस तू दे सोई जन पावे
0: पावे ता सो जन दे जिसनो होर क्या करे।

0: कि उधर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिये,
1: मनो क्यों विसारिये, वरदाता जे अगन में आहार पहुंचावे,
0: उसनु कोई पोहे न सकी जिसनु अपनी लिव लावे,
1: अपनी लिव वापे लाए गुरुमुख सदा संभालिये।
0: नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारिये,
1: जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया,
0: माया अगन सब इको जही करता खेल रचाया,
1: जात स्पाणता जन्मया परवार पला पाया,
0: छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया,
1: ए माया जित हर विसरे मोप जय पौ दूजा लाया,
0: ए नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन्ने विची माया पाया,
1: हरे आप मुलक है मुल्ला पाया जाए,
0: ना पाया जाए किस विटो रहे लोक बिल्लाए,
1: ऐसा सतगुर जे मिला तिसनु सिर सौपिए विचो आप जाए,
0: जियो तिस मिल रहे हर वसे मनाए,
1: हरे आप मुलक।

0: एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं तप प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे नित संतो बार गनी मन गारे
1: पंच पसुर नाग नाम नराधर सब सर सब को प्रतपाल
0: है जल में थल में पाल में कल के नहीं कर्म विचार है
1: दीन दयाल दयानी दुख देखत है पर देत न हारे
0: दुख दोखन को दल दूजन के पल में दल डारे
1: खंड खंड पचन पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभारे
0: सके पद्मापत वेद कते भेद उचार
1: रोजी राज लख त्राजक रोग वाहन की रोजी नाटा रे
0: रंग को रंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए
1: देव देव खपे हमेव न पे लखे उपरम सिंह परमाए
0: नानक देव कुरान हसेव थके कर हाथ नाए
1: पूरन प्रेम प्रभाव बिना पद श्री श्री पद्मापत पाए
0: आनंद गाद द्वैक सो भूत भवेख भवान अपह
1: अंतहीन अनाथ महापुत दाग दुख छिद्र शह
0: के करता हरता जल में धल में परता प्रभ है
1: दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ए है
0: न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न सोग न भोग न पह
1: है सभे सभोतन में बिकत अगे अच्छे हैं।

0: हस्त कीट के बीच समाना राव रंक जय इक्सर जाना
1: अलख पुरख अगामी सब कट कट के अंतर जामी
0: अलख रूप अच्छे अन पेखा राग रंग जय रूप न रेखा
1: बरन चेह सबूते न्यारा आद पुरख अद्वे अबकारा
0: बरन चेहन जे जात न पाता सत्र मित्र जे तात न बाता
1: संते दूर सबंते नेरा जल थल मैयल जाए बसेरा
0: अनहद रूप अनाहद बानी चरण सरन जे बस्त पुवानी
1: ब्रह्मा विष्णांत नहीं पायो नेत नेत मुख चार बतायो
0: कोट इंद्र उपिंद्र बनाए ब्रह्मा रुद्र उपाय खपाए
1: लोक चतुर्दस खेल रचायो बहुर आप ही बीच मिलायो
0: दानव देव फनिंद अपारा गंधर्व जच रचे सुविचारा
1: भूत पवेक पवान कहानी कट कट के पट पट की जानी
0: तात मात जे जात न पाता एक रंग का हू नहीं रहता
1: सब ज्योत के बीच समाना सबू सर्व ठौर पहचाना
0: काल रहत अनकाल स्वरूपा अलख पुरख

0: जाके बस खान सुल्तान जाके वसे सगल जहान
1: जाका किया सब किछ होए तिसते बाहर नाही कोए
0: विनती अपने सतगुरु पाए काज तुम्हारे दे निभाए रहाओ
1: सब ते ऊ जाका दरबार सगल भगत जाका नाम आधार
0: पद पूरन तनी जाकी शोभा घट घट बनी
1: जिस सिमरत दुदेरा टहे जिस सिमरत जम किछ ना कहे
0: सुके हरे जिस सिमरत डूबत पहान तरे
1: संत सब

0: सुख नाम हर सोबा चिंता लाए हमारी रहा
1: अवरना सुजय दूजी ठहर हार प्रयो तो द्वारी
0: लेखा छोड़े लेखे छूटे।

चल के मेहनत की तो शरणाए जियो, मैं असर की चित में मेरा सब दुख गवाए जियो, मैं असर की चित में मेरा सब दुख गवाए जियो, सो कहो टल गुर सेविए अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों जटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए सजन सच्चा पातशाह,

चक्र चिन्ह अरबन जात अर पातन हिन जे हे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के हे अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कहि जय कोट इंद्र इंद्राण साही साहाण गणि जय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण त्रिन कहत त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसेय गुरु के जन्म मरण दुख जाय हो सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांद साहो जिस पास बहिठ्यान सोही है

जो किछ है सो तेरा, कदों झोलियां भरदियां ने जदों एडी निम्रता ते एडा प्यार आ जावे। महाराजा रणजीत सिंह किन्ना सत्कार गुरु दा करदे ने, अपने घर दे विच सब तो उच्चा स्थान गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा। जदों भी अपने महलां विच आंदे ते सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन करदे ते फिर अपने बच्चियां नूं मिलदे सन। किते भी कार विहार ते जाना ते पहला सतगुरां कोलों आग्या लैंदे सन। एक दिन रणजीत सिंह जी बहुत भारी जंग लड़न वास्ते जा रहे ने ते जान तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अगे गल विच पा के पल्लू अरदास कर रहे ने, सतगुरु मेरे विच कोई सियाणप नहीं, मेरे विच कोई बल नहीं, तुसा बख्शिश करनी है मेरी जित हो जावे। इतिहास विचों की सोझी मिलती है, लखां दी फौज ते एक पासे महाराजा रणजीत सिंह। अज इस मैदानी जंग विच रणजीत सिंह दी जित होई, कोई भी बैरी अगे ना खलोया। बड़े बड़े राजे महाराजे रणजीत सिंह दी बड़ी शोभा कर रहे हैं, रणजीत सिंह तू ते कमाल कर दिती, एडी तेरे विच सियाण किड्डी वड्डी जंग जित ली है। आ जदों हर एक ने शोभा कीती ते रणजीत सिंह दे मन विच भी मैल आ गई भी सचमुच ही मैं बड़ा वड्डा योधा, मैं किड्डा वड्डा काम कीता है, कोई भी मेरे अगे ना खलोया। आ जदों घर आया ना ते नित कर्म अनुसार सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे कमरे विच गया। जदों जाके नमस्कार करन लगा ते मन दे विच ख्याल आ गया, मना जित ते गुरु ने कराई है ते वड्याईयां तू लई जांदा है, तेरे मन दे विच क्यों मैल आई है कि मेरी सियाण पगर करके सब कुछ होया है। आ देखो असी निकी जिनी चंगियाई कर लईए, एक पखा भी गुरु घर दे दईए ते मैं मेरी विच फस जांदे, ते उपर मेरा नां लिख दिता जावे मैं दिता है। आ मन विच मैल ही आई है ते रणजीत सिंह ने की कीता, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे चरणा विच बैठ के एक हाथ दे नाल अपनी दाढ़ी पकड़ी ते दूजे हाथ नाल अपने मुंह ते चंडा मार रहे। ऐ मना क्यों तेरे मन विच मैल आई, जित कराउण वाला गुरु ते तू बड़ियाईयां लई जांदा है। पढ़ो इतिहास की आख रहे ने, जोर जोर देनी चंडा अपने मुंह ते मार रहे ने, ओ काणिया वड्याईयां देण वाला गुरु ते वड्डा तू बनी जांदा है। हरी सिंह नलुआ बार सुन रहा है, सतगुरां दे कमरे विच रणजीत सिंह नूं कौन बोल कबोल बोलदा है। आ जदों जाके दरवाजा खोलिया ते की तकिया, रणजीत सिंह आप सतगुरां दे चरणा विच बैठा, एक हाथ नाल दाढ़ी पकड़ी ते दूजे हाथ नाल अपने मुंह ते चंडा मार लिया है। क्यों तेरे मन विच मैल आई है, क्यों मैं मेरी आई है, सब कुछ करन वाला गुरु है। ते नलुए ने जाके हाथ पकड़ ले, रणजीत सिंघा तेरे अखां दे हंजू दस रहे ने तू अपने औगणा ते पछता रहा, गुरु बड़ा ही दयालु है, उठ खड़ गुरु ने तेनू बख्श दिता है। सो सत संगियो कदे भी मैं मेरी ना आवे, ऐ सतगुरु जो किछ है।

धन दौलत बड़ा कोल है पर कोई औलाद नहीं। हर रोज सतगुरां दे अगे तरले करदा है, सतगुरु तू सब दी झोली भरदा है, मेरी भी झोली भर। असत संगियो जंग मंगियाणी दी गल है, पाकिस्तान दी ए साखी। सतगुरां ने भाग लाए इहदे घर पुत्र होया। आपां संसार विच तकिया है, दात प्यारी विसरिया दा तारा। जदों दाता मिल जान ते देण वाले नूं भुल जांदा है। मंगदा गुरुद्वारियों है ते खुशियां ठेकियां ते क्लबां विच जाके मनांदा है। आ पुत्र होया ना गुरु नूं भुल गया, शराबां दियां पेटियां खुल गईयां ते अपने मित्रां नूं शराबां ते कबाबां दे नाल खुश कर रहा है। समां बीतदा गया, पुत्र वड्डा हो गया।

एक दिन अपने बाप नू तके मार के बाहर कट देता है। तू मेरा प्यो नहीं, तू मेरा दुश्मन है। नौ भी किड्डे बोल कबोल बोल दी है। एडिया एडिया उच्चिया कोठिया ते बड़िया बड़िया कारा खलोतिया ने, ते ए सेठ गेटा दे बार बैठा प्रसादे तो भी मोहताज है। आज पुत्र जिनू एडिया मनता नाल मनिया सी, एक प्रसादा भी देण नू तैयार नहीं। बाबा नंद सिंह जी नानक सरवाले अज इस नगरी विच आए। बाबा जी दी सोभा सुनी ते दीवान लगा होया है। समाप्ति होई ते जाके बाबा जी दे चरण पकड़ ले। बाबा जी मेरे कोलों केड़ियां भुला होईयां ने, जेड़े पुत्र नू एडियां मनता मन के लिया सी उन्हें धक्के मार के कढ़ दिता है। नौ बोल कबोल बोल दी है। जदों अपनी मां नू बच्चे माड़े बोल बोलते ने, ते मेरे तो सुनिया नहीं जाता। किड़ा गुनाह कीता है, किड़े जन्म दी सजा भुगत रहा हां। बाबा जी आखन लगे हुए सेठ ऐसे ही जन्म दी भुगतदा पिया। एक गल दस, पुत्र मंगिया गुरु नानक दे दरबार विचों, ते खुशियां किहदे नाल मनाईया सी? अपनी खुशी विच गुरु नानक नू बुलाया सी? शराबां ते कबाबां दे नाल तू दोस्तां नू मित्रां नू खुश कर सकदा है, गुरु नानक नू खुश नहीं कर सकदा। जिन्ना चिर गुरु नानक नू खुश नहीं करेगा, उन्ना चिर तेरियां खुशियां कच्चियां ही रह जाएंगी, तेरियां खुशियां पक्कियां नहीं होंगियां। तू गुरु नानक नू भुला दिता। बाबा जी दे चरण पकड़ के हंजू केरे, बाबा जी सच ही मैं बड़े गुनाह कीते ने, देण वाले नू भुला दिता है। ते बाबा जी कहिंदे, सो क्यों विसरे जिन सब किछ बीया। दोस्त मित्र रिश्तेदार तेनू खुशी वेले सारे याद रह गए, ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तेनू भुले गया।